एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिह्न अर वर्ण जात अर पात नहिं जिह रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत केह अचल मूरत अनभउ प्रकाश।

जाकै सिमरन होए आनंदा, बिनसै जन्म मरण भय दुखी। चार पदार्थ नव निध पाव, बहुर ना तृष्णा भुखी। जाको नाम लैत तू सुखी, सास सास ते आवहु ठाकुर कौ। मान तान जियरे मुखी, शांत पावह होवह मन शीतल। अगन नायंतर तुखी, गुर नानक कौ प्रभु दिखाया। जाल थाल त्रिपवन रुखी, सूरा सो पहचानिया। जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै। कबहू न छाड़ खेत, जाओ तौ प्रेम खेलन का चाओ। सिर तार तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजा। सिर दीजा कान ना कीजा, अंदर सच्चा नेह। लाया प्रीतम आपना, तान मान होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का।

तुद डिठे सच्चे पाते साह, माल जनम जनम दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहा दैसाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह। सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहा दैसाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दा वेसाह। सत

नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक कामण कंत पावन आपे ही रावे आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे नानक

गए मशक्कत का, नानक ते मुख उजले केते छुटे ना, जिने नाम ते आया गए मशक्कत का, नानक ते मुख उजले केते छुटे ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: तेज अपना आप जर सर्प कला परिपूर दी सहजत कता नानक दासन दास तुदया गै बिलवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाए दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाच धर्म हदूर करमी आपो अपने।

श्री गुरु गोविंद सिंह सब भाई सहाय दसा पातशाहिया की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जीवा।

आवह संतह जी सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू कट कट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक क्रह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जी वाडे अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया। जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना एह सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ै पई ले निवासा। पाणी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी आले मन एक न चेत समूढ़ मन।

हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाउ। ना हौ जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जाप।

शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोहे बचावह। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरिन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुमै संभारा, काल फास ते ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दो।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं।

आया उत्तरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उत्तरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पय सर।

नेत नेत राख और तारू तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारू। श्लोक

नाम जपी नामो सुख सार, नाम जप हो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर न कोई, वड़े भाग गुरमुख हर लैना, नाम बिना नहीं जीवे आ जाए, वड़े भाग गुरमुख हर पाए, नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पा।

नानक गुरमुख नाम दिवाया, गुर का शब्द रखवारी, चौकी चौगिर्द हमारी। राम नाम मन लागा, जाम लचाई कर पागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता। नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेव न बिरथी जासी। आनंद करह तेरे दासा, जप पूरन होई आसा। गुरमुख मार्ग आखिया, गुरमत हितकारी। हुकम रजाई चलना, गुर शब्द विचारी। पाणा पावै खसम का, निहचौ निरंकारी। इसक मुसक महकार है, हुए पर उपकारी। सिदक सबूरी साबते, मस्ती हुशियारी। गुरमुख आप गवाया, जिन हऊँ मैं मारी। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह कुर सह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते साह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साह, सिर साहा दैसाह। जिस पास बैठे आसो ही है, सब ना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पात साहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास

कौतक कोड तमासिया चित न आवसनाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उज्जड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मान्या झूठ समग्री पेख सच कर जान्या काम क्रोध अहंकार फिर है देवान्या सिर लगा जम डंड ता पशुतान्या

बसंत स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नव खंडन है। बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान परमन है। कौतक कोड तमाशया, चित्त न आवस नाओ। नानक कोड़ी नरक बरा।

पशुतान्या बिन पूरे गुरुदेव फिर सैतान्या सिर लगा जम डंड पशुतान्या।

प्रभु नानक दे कर हथ समरथ गुरु सिर हथ धरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस्बास रेक

व्यापार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्यावन जे त्या लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सतिया मन संतोख उपजय देना कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बाबेकार एक होंदा खाए चलया था तिना पे काई कार जल थल जिया पुरिया लवाया कर आया।

थोड़ी सेव की थी संतोखी नि सचो सच ते आया उनी मंदे पैर न रखियो कर सुखरी धर्म कमाया उनी दुनिया तोड़े बंधना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला।
1: लख ने किया चंगियाईया लख पुना परवान लख तप उपर तीर्था सहजोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरतीला ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करतै करना किया लिखिया मन जान नानक मति मिथिया।

0: काहे आया काहे आया काहे आया।
1: पौड़ी सच्चा साहिब एक तुझ नी सच सच वरताया, जिस तू दे तिस मिले सच तो तेनी सच कमाया। सतगुर मिले सच पाया जिन कै हिरदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया।
0: हरे अमृत

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुइना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया।

पौड़ी दान महिंडा तली खाग जे मिले तो मस्तक लाई है। कूड़ा लालच छड़ी है हो एक मन लख त्याई है। कल ते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे हो वह पूर्व लिख्या ता धूड़ तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है।

शतर न पतर न चौर न चावर, बैती जात रिसे ना बिचारो, रात न असन गज सिंह आसन, शिन में त्याग नांग सिधारो, सूर न बीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृत्र साजन साख, उल्ट दे जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रापूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्री पतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत।

गब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरयो है दह दिस ताए महाबिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन।

0: संत आप करियो है।
1: गुण समो फल सगल मनोर पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर ना उच्चारी। इशनान दान तापन सुच क्रिया चरण कमल हृदय प्रबतारी। साजन मीत सखा हर बंद जीतान प्रभ प्राण अदारी। ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
2: आवत कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग। दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मागो। पावक जर्यो ना जात रहो जन तूर लाग। नीर ना साक्ष बोर चले हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह सुदे हर नाम खग।
0: उद्यम कर लागे बहु पाती बिचरै अनचक शास्त्र बहु खटुआ। पसम लगाए तीर्थ ब्रो पमते सुखम दे बंदे बहु जटुआ। बिन हार भजन सगल दुख पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाट कर थटुआ।
3: सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मल नासी। सतगुर चरण कवल रिद तारंग गोरे अर्जुन गुण सहज विचारंग। गुर रामदास कर कियो प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा। तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो गल जोड़ कर सो जस वखाण्यो। भगत जोग को जैतवार हर जनक उपायो। शब्द गुरु परकास्यो हर रसन बसायो। गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो। गुर अर्जुन कर गुर रामदास भगत उतर आयो।
4: सतोर खेमा तान्या जुग जोत समाने। अनपो निज नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। यो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने।
5: जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया। सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया। अकथ कथा अमरा पुरी जिस देह सो।

गर्भ गहलड़ो मूड़ड़ो ही हो रे ही हो महाराज रे मायो डीहर ने आई मोह फाके ओ रे रहाओ कणो कणो कणो साद लोड़ा।

थारे सगले प्राचत मिटो रे, जाको लहनो महराज री गाठड़ियो, जान नानक गर्भास ना पौड़ियो।

जाको लहणो महराज री गाठड़ियो, जान नानक गर्भास ना पौड़ो रे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। टोडी महला पंजवा, गर्भ गहलड़ो मूड़ड़ो हियो रे, हियो महराज री मायो, डीहर ने आई मोहे फाके।

प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय।

दान बबे के दान विसाह दान प्रसादान दान सरदान नाम दान श्री अमृत सर साहेब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे।